जाना रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेयर इन्फॉर्मेटिव उजाला पिंडनेल उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियोर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ।

0: रोजी, रोजी पहले क्रिसमस में तो सबसे पहले आ जाया करती थी, मगर कुछ दिनों से लगता है तुझे कुछ हो गया है। कहीं किसी से लव वव तो नहीं हो गया
1: क्या?
0: ओफ, लव यानी प्यार, मोहब्बत।
2: वो होने से क्या होता है?
0: जब मुझे हुआ था तो मुझे नींद नहीं आती थी।
2: मुझे भी नहीं आती।
0: मुझे भूख नहीं लगती थी।
2: मुझे तो प्यास भी नहीं लगती।
0: दिल में दर्द होता था।
2: दर्द तो मुझे भी रहता है।
0: बस यानी कि तू गई काम से।
2: क्या?
0: ओफो, यानी कि तुझे प्यार का रोग लग गया है और इस रोग की बस एक ही दवा है।
2: वो क्या?
0: वो ये कि जिससे प्यार हुआ है अगर वो दिल पे हाथ रख दे तो दर्द मिट जाएगा। मारिया! रोजी, ए रोजी, ओ गॉड,
3: क्या हुआ यो यो?
0: देखो ना क्या हो गया है अपनी रोजी को।
3: ये रोजी तो हर रोज कोई ना कोई नाटक करती है।
0: नहीं नहीं, ये नाटक नहीं है, ये तो बेचारी सचमुच बेहोश हो गई है। कोई दवा दारू करो ना इस बेचारी का।
3: ये जो दौरा है ना, ये मिर्गी का है और इसका इलाज सिर्फ जूता सूंघा।
0: नहीं!
3: देखा, जूते का नाम लिया और दौरा गायब।
1: बाय गॉड, आज क्रिसमस का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये दौरा मिर्गी का नहीं है।
3: तो यो, तूने बुलाया और मैं चला आया। यारों का टाइम मत बर्बाद कर, सच सच बोल तुझे कष्ट क्या है।
4: मुझे दर्द रहता है। दिल में दर्द रहता है।
5: अच्छा?
4: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
5: बाप रे,
4: सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ, जाने क्या हुआ मुझको, कोई दे दवा मुझको।

अज्ञान के अंधकार से मुक्ति देने वाला परम पिता परमेश्वर ही है। वही जगत का पालनहार है। आओ निर्मल मन से शरणागत होकर प्रार्थना करें, हे प्रभु हम भटके हुए प्राणियों को राह दिखाओ।

Hoe meer je ze hoort, hoe beter ze klinken. Origineel hier op de draaitafel deze uit de film Dhamki Kagana Hamne Aapko Sunaye. Way back de jaren 70. Is wacht de hotte de hoegel. Saat beginnen met 11 minuten. 11 minuten voor 7. Ik heb Mohammed Rafi van je On the Beat of Modern Mohan. Met het onsterfelijk lied uit de film Jis Ka Naam Hai. Nou niet halen. एक बहुत अच्छा गाना हम आपको सुनाएंगे आपकी आहें ना भर जाए वक्र हिर अलमाल खें खनुख फान ऐसे मौसम में सुबह के वक्त जब घाम निकसल है दिन होते होते तो हो जाते हैं दिल को खुश कर देते हैं दिमाग को कहीं और ले जाते हैं आपका म्यूजिकल दिल

कैसे लगा आपको उजाला का मजा, द बेस्ट ऑक्टन शो ऑफ द हिंदुस्तान सरारियो हीर अनलेन हीर अब तिरंगी सात बजने में सात मिनट बाकी सेफ म्यूजिकल मिनट इन फॉर सेफ जो मेटेन कमिंग अप न्यूज ऑन द आवर एंड लुस्टर अंदाज़ मिस्किन होरी ओक फॉर द बिलंगरेक आइटम्स इन द न्यूज बाकी जो समाचार है मस्ती है आज उजाला का मजा में सात बजे के बाद मेरे जरिए जरूर सुनते रहना मेरे यार जस्ट heeft een Jan ook een van die tekstschrijvers in de muziekindustrie van Bollywood een prachtige soundtrack geschreven voor Sangeet Ki Devi en Mohammed Rafi. On the Beat of G.S. Kohli, the original soundtrack, The Adventures of Robin Hood, namelijk film mee, waarin we hem aan het zingen. Jawa, jawa, hoesneke.

0: Jala Radio.
1: सतीश नाम का बाबू हॉलैंड में रहने वाला, सतीश का नाम है वेक अप शोमैन, सबको जगाने वाला।
2: Wanna gaan niksel hè? Nou, het is een mooie prachtige dag vandaag. Geniet ervan, doe je ding and have a nice bright and sunshine day. Dat was het voor vandaag horoscoop.

और गीत आप सुने फिल्म ब्रह्मचारी का मारदानु सनम, हाँ सनम के जरिए। एंड सुनने वालों अब उजाला रेडियो पर मोहम्मद रफी साहब फिल्म वारिस का गीत को लेकर के

एंड एक बेचारा प्यार का मारा, मोहम्मद रफी साहब से आप गीत को सुने, फिल्म वारिस से निकाला हुआ मोई गाना तो या मार। अब सुनिए एक और मोई गाना पेश है एंड ओक मोहम्मद रफी मडन लता जी के साथ। उजाला रेडियो है ये, तू जाने है तो

हमारे सभी सुनने वाले को हरि को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं हमारे प्यारे सुनने वालों। चाहे जहां पर आप लोग प्रोग्राम को सुनते होंगे वहां तक हम आप सभी को प्यार से, दुलार से, दिलो जान से स्वागत कर रहा हूं। हमारे प्यारे श्रीमलू, हमारा दफ्तर का फोन का नंबर है 9309907 पर आप लोग तार कर सके हैं हर एक काम काज के लिए, या तो हमारे वेबसाइट पर आप जाइए www.ujala.nl या तो info@ujala.nl पर हर एक जानकारी आपको मिल सकेगा।

0: वेल, तुम न जानो किस जहां में आप खो गए। अवसरों से लता जी के अवा उसमें गाना जी प्रोग्राम में भी आप लोग सुने उजाला रेडियो का प्रोग्राम। हमारे प्यारे शिनवलो,
1: कुछ पुरानी कुछ नई। मुकेश भैया का हृदय कितना विशाल था, कितना प्रेम था उन्हें अपनी छोटी बहन से। एक दिन अमेरिका में कार्यक्रम शुरू हुआ तो वो बोले,
2: हम तो आज भी हर रोज की तरह, हमेशा की तरह उसी गाने से ये महफिल शुरू करेंगे। होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के बासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मगर इससे पहले, जिस देश में गंगा बहती है उसकी एक तहजीब है, और वो ये है कि जहां लता मंगेशकर जैसा महान कलाकार परफॉर्म कर गया हो, उस स्टेज पर किसी दूसरे कलाकार को कभी आना नहीं चाहिए। मगर उन्होंने बड़ा भाई बना के मेरे ऊपर इतना जुल्म कर रखा है कि हर एक किस्म की बदतमीजी मुझे इजाज़त दे रखी है।
3: भैया और बहनों, मुकेश भैया प्यार में ना जाने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ कर जाते हैं, हालांकि मैं उस काबिल नहीं हूँ। मैं शायद इस तरफ गाने के लिए कभी नहीं आती अगर मुकेश भैया नहीं लाते तो। ये एक साल मेरे पीछे पड़े रहे और जिद करके मुझे यहाँ ले आए। मुकेश भैया, मैं आपके बहुत आभारी हूँ। मुकेश भैया मेरे बड़े भाई हैं और मैं हमेशा उनसे आशीर्वाद चाहती हूँ, तारीफ नहीं।
2: लीजिए, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के बासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है,

लाल होठों पे सच्चाई रहती है, जिस देश में गंगा बहती है। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे, हमारे प्यारे रुचि लता खांसकर के लता के कुछ डायलॉग आप लोग सुने, और मुकेश जी के आवाज में गाना जो आप लोग सुन रहे थे। यू आर उजाला रेडियो है

लतवें और मुकेश जी के आवाज में गाना जी प्रोग्राम में आप लोग सुने अल्लाह जाने क्या होगा आगे। उजाला रेडियो का प्रोग्राम हमारे प्यारे सुनेमलो और हमारा दफ्तर खुला रहता है सोमवार से लेकर शनिवार तक दिन में 10 बजे से लेकर शाम में 3 बजे तक।

दिल की नजर से कोई हमें बता दे, वेल कितना मोई, कितना विशाल, लता एंड मुकेश जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने यार, दिल की नजर से तो हर एक बात होता है। एक मंजिल राही दो यार।

राहुल के मंजिल राही दो और फिर प्यार कैसे ना हो, इस तरह से लता एंड मुकेश जी। यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम।

राहुल अरे यार सैया छोड़ दे और इस तरह से मुकेश जी एंड लता जी बोले तेरा हाथ ना छोड़ू तेरा साथ ना छोड़ू बोले तू कहाँ जाएगी राहुल कितना विशाल कितना मोय

आओ यार नजर नजर से बात हो रही है प्यार की, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने और वो भी खास करके लता और मुकेश जी के आवाज में उजाला रेडियो का प्रोग्राम।

गोरा कागज था मन मेरा, उस तरह से लता एंड किशोर कुमार की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, और हमारे प्यारे सुनने वालों उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे, चाहे जहां पर प्रोग्राम को आप लोग सुनते होंगे वहां तक हम आप सभी को प्यार से दुलार से दिलो जान से स्वागत कर रहा हूँ अपने ही प्रोग्राम में।

वेल यार देखा देखा एक खाप तो सिलसिले हुए अवसरों से लता एंड किशोर कुमार एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम

मोहब्बत बड़े काम की चीज है, अवसर से लता किशोर एंड येसुदास जी के आवास उजाला रेडियो का प्रोग्राम वेल परदेसिया परदेसिया यू आर उजाला रेडियो।

ओहो परदेसिया, लोग कहते हैं मैंने दिल तुझको दे दिया। आओ इस तरह से लता एंड किशोर कुमार के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, और वो भी फिल्म का नाम मिस्टर नटवरलाल। स्टेशन है उजाला रेडियो, और हमारा दफ्तर का फोन का नंबर 9 3 9 0 7।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

मौसम मस्ताना और रास्ता अनजाना। आशा जी एंड दिलराज कौर से आप सुने फिल्म का नाम सत्ते पे सत्ता, सत्ते पे सत्ता, और ये है उजाला रेडियो।

मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान की आजादी की सालगिरह पर मैं और मेरे साथी आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं, और जिस शौक से आप आजादी का जश्न मनाने यहां आए हैं उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आज रात यौम आजादी के शानदार जश्न पर मैं और मेरे साथी आपके सामने एक कव्वाली पेश करने वाले हैं, मगर इससे पहले मुझे इतनी गुजारिश करनी है कि आज ये कव्वाली महज कव्वाली नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का, मेरी मोहब्बत का बहुत बड़ा इम्तिहान बन गई है। हादसा अक्सर इंसान को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं और उसे फैसले का हक होता है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे, मगर मेरे लिए तो वो दोराहा भी नहीं, मेरे लिए एक ही रास्ता है, एक ही फैसला, एक ही अंजाम। इसलिए आज इस भरी महफिल के सामने मेरा ये वादा है, या तो वो हाथ जिन्होंने मेरे गले में ये हार डालते हुए मोहब्बत की कस्में खाई थी मुझे दोबारा ये हार पहनाएंगे, या आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी।

अग्नि संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

उजाला रेडियो आपकी आवाज आपके गीत और संगीत आपका मन प्रिय रेडियो स्टेशन ये सब मिलाकर बनती है उजाला रेडियो।

उजाला रेडियो पूरा हॉलैंड में डीएबी प्लस पर और दुनिया भर में इंटरनेट के जरिए उजाला.nl।

बिल्कुल रावण तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं सुन वालों। तो डीजे आर फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाज़ फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस खाई बिल्कुल रावण तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है। नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो, ईमेल info@ujala.nl 15 आवाज़ फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

ये है उजाला रेडियो। रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: और दिन के देवे है तोर साथ के तोर साथ सोते है के तोर साथ जागे है केकर साथ तू ओतो में घूमे है और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है उजाला रेडियो के साथ तो हाँ हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू

रेडियो सुन लो और घड़ी की तरफ देखा जाए तो अब वक्त हो गया है वही प्रोग्राम पेश करने के लिए और वो भी एक प्रोग्राम का नाम कॉफी चाय और मेदक शो आपके वास्ते यही से शुरू किया जाता है प्रोग्राम कॉफी चाय मेदक शो आपके वास्ते वेलकम ऑल माउ ऑफ दिस प्रोग्राम

पुण्य संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश Voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.

गेम मेरे घंटे पे प्रेस। बैड बॉय शाह कैसे तुझे तेरे बस का लगा, ना मुझे ऐसे मस का लगा। रही ना किसी काम धाम की, जब से लड़की को चस्का लगा।

0: मीदा कोफिया आवे कि ना आवे कोफिया
1: ना ना अबे अबे कोई दिखाई में ना करेगा यहां पे हम आए हैं
0: ओके तू आ गए दैट इज द बलंगराइट से तू आ जाएगा तब है तब
1: नूर आ गया है मैं आ गया हूं नूर आ गया है
0: तो माहौल भी धीरे फरांदर हो जाए तो
1: धीरे खुशी खुशी हमेशा खुशी खुशी दोस्त कोई कोई आदमी हैगा जो हमेशा डिप्रेसिव रहेगा हमेशा कुछ क्लाक करेगा एक साथ लीवर पॉजिटिव है ना
0: मुतवाल तो नहीं तो कैसे दिन में कटेगा दिन में ना कटेगा अंदर
1: नो यही लीफ कैसे कटेगा यही लीफ वर्ड्सवार हर कदम में तो कह जनाएगा कि बहुत हेवी है यार तो अगर अगर पॉजिटिव इंस्टार दन या दन ड्राग ये तो gewoon आओ कौन ची हमें दिए लाओ एक ड्राग het wel
0: zeker हां toch
1: want je moet het dragen je moet durven te dragen
0: je moet het inderdaad dragen en dan ja nou ja ja nou
1: John Lewick के बालों John Lewick के
0: John Lewick है तू ले
1: खुशी खुशी ये क्यों नहीं सेखा हम ना ले चाहे वो मन दुख है चाहे सुख है हर एक इंसान के लाइफ में तो अच्छा चीज होवेगा खराब चीज होवेगा दुख हो रहेगा सुख रहेगा खाली यस ये क्यों नहीं सका हम खाली सुख मांगीला खात नीट लोग भैया चाहे तू राजा बाते चाहे तू प्रजा बाते है दोनों तोर पास आएगा कभी ना एक एक ना एक दिन तो के दुख भी पड़ेगा देख एगो राजा के दुख ना है शायद पैसा के अंदर पैसा कमियों में ना बा एगो एगो खसौन था इसके दुख वेल है ओके हो सकेगा यार हर एक इंसान के पकड़ सके कुछ कोई बीमारी कुछ दोस्तों ना सोचिए कि राजा के को दुख ना बा राजा के पास भी दुख है यार दोस्त हम लोग के दुख जोन है खुशी खुशी हम लोग सह ले जा वही बहुत खप ना दोस्त हम लोग बंद कर
0: दीजिए
1: एक दत वेल खनोख फॉर फॉर
0: और कौन सी बोले के और कुछ ना बोले के क्लास डोन
1: नया जीवन में जोन ची होवेगा तू सह ले
0: या हम जस्ट आयले तो लेती है हम जगीला सवेरे एक बैन हेल मफ्रोलोक एक चाहे जोन चाहे जोन या प्रॉब्लम है और वादन हो चाहे जोन ये गाट गाट दोर,
1: दोर ये गाट गाट दोर। दोर। दोर। ये गाट गाट दोर। ये गाट गाट दोर। John John en me, hij zei, ja, sommige mensen zitten echt zo in elkaar hoor.
0: Ja.
1: Dat ze zoveel zelfmedelijden hebben. Ki hamar upar ee probleem waba, hamar upar ee probleem. Arre yaar bhaiya, ek chit tu samaj to, tu ekele naam baate dunia mein, jakur upar probleem ba.
0: Mang.
1: He? He. Dus sab koi ke upar kabhi na kabhi probleem pate, parega.
0: Ja.
1: Maar ook mensen, hè, Lloyd, hamego baat bolen bij dheren nigo sa jaiga, maar het maakt mij niet uit, wij zijn prietpangi.
0: Direct, jo ki bolen ke bolen, direct.
1: Dus dhalle tor mai, ya baap, ya koi bhi, dhalle hoige 90 jaar.
0: Ja.
1: 95.
0: Ja.
1: Dicht bij de 100. Ook als je mritjo bhal, natuurlijk toke duk rahiga.
0: Ha.
1: Natuurlijk toke, hè, pira rahiga ki tor mai of tor baap apna
0: rahiga. Zeker toch, zeker.
1: मा तो के चाहेगा भी उतना सहन शक्ति रहे के तो कि तो के सह ले दुखवा मन तोर माय बाप जो उतना लीफ ताई थाल करी से और काली है यार इस तो खनूख
0: या इस खनूख एन डेंग अन द हेरिनिंग जो हेरिनिंग छोड़ के गल है दार में ही कहीं दिस फेडर
1: और सब कोई के एक ना एक दिन जाए के है
0: वो तो है
1: अगर तोर माय बाप ऊ लीफ ताई बराई करी से तो के चाहे खुशी रहे के दमुच ब्लेस एंड दमुच accepteren.
0: Ja.
1: En dan moet je niet steeds blijven zeggen van ja, maar ham me bohut dukba, ham me bohut dukba. Ham samjila yaar toke dukba. Maar ham ook het obitalba uche jwa. Lloyd ke upar bhi bitalba. Sab koi ke upar bitega. Vroeg of laat. Alleen het is veel pijnlijker tu abbe toke chota chota larkan ba. To of tu 50 baris ke baate, 40 jaar ke baate toke hard maar deis toke kuch hoige aur tu chal gele. Dat vind ik veel pijnlijker Lloyd.
0: Als je op jonge leeftijd komt overlijden, ja, dan heb je al doek parega.
1: Hoe behoed je dat doek, ja? Hoe leeftijd kan je?
0: Ik hoop dat ik de 80 haal. 80 vind ik al mooi, hoor.
1: Nou, de cruciale leeftijd wat pas aan jullie wat, hè? Bij mannen, Hindoestaanse mannen.
0: Pina, ham pas aan jullie.
1: Hij heeft ook gevaarlijke leeftijd gehad bij Hindoestaanse mannen ook.
0: Yeah,
1: zo,
0: yeah.
1: Rond de 45 ongeveer. Die hartproblemen heel erg. Dus thora se bachai ke mannen, Hindoestaanse mannen, John 45 jaar ke ba ongeveer, thora se upar niche, thora se apan hart toort khyaal karwe ye yaar.
0: Ja, kijk, hartwa ke, je hebt het allemaal zelf in de hand. Heeft ook te maken met je leefstijl. Ooit iets wat belangrijk, je leefstijl.
1: Nou ja, maar ook aanleg

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे। और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।